0: 三块。
1: 赵门美和3-2淘汰了陈毅，这场比赛胜者下一轮对赵门美和。对，长球发得不错，发完球之后侧身。还是发长球。就阿库拉这个球有准备，他想接发球直接变线。精彩啊！最起码阿库拉能够跟住申玉斌的进攻节奏了，其实这个很重要。6-3。申玉斌的防守反击，追到4-6。打这个颗粒选手基本上就是发这个正手位短球和反手位长球。这也是申玉斌的调整，在开局不利的情况之下，你看现在进入到相持段，自己攻完之后马上注意还原，要去注意自己的衔接。现在阿库拉叫暂停了。这一段申玉斌应该是打了阿库拉一个5-2啊。
2: लंबा सा लगे ही खेल रहे हैं वही एक बार कोशिश एक बार करना पड़ेगा घूमना पड़ेगा एक बार या फिर अगर प्लेन से भी कर रहा है ना देखिए थोड़ा पीछे आ जाना कि वो जैसे ही मारे आप ये और ये पूरा जब कर रहे हो ना वो आएगा जैसे ये पूरा होगा नेट लेवल जाएगा वो पुश करेगी फिर आप आराम से मार सकते हो बट आप मारने के बाद रेडी रहना बॉलें आते रहेंगे ठीक है वो हमें कंटिन्यू जब तक पॉइंट मिलते नहीं तब तक उठना नहीं पैर चलाते रहना और कभी कभी करना है सर्विस करके उसको बनाने के लिए इनवाइट करना है मैं कि वो बनाना करे और आप घूम के खड़े रहो ठीक है वो बोला वो फोरहैंड पे करेंगे तो ठीक है जाने देंगे कोई दिक्कत नहीं बट यही हमारे पास चांस लेने के लिए यही टाइम ठीक है कम ऑन
1: 平，申玉斌给追上来了。
0: 哦，
1: 阿库拉打了一个发抢。